पोहं पातिक बिना सह गुर अमरदास परसी है सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसी है ध्यान लइए पौ मुकह गुर अमरदास परसी है अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रहै जा सुमंत्र मान वैल है जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसो रूमावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

परम सम्मान योग जुग हो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाही मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी खुरां पासों सरवण कीतियां ने कल दा दिन जो बतीत होया है कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब सी ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नू आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदों आपां इतिहास नू गुरमत नू पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलखण सानू जिहड़ी नजर आउंदी है इत्थे गुरु दी किरपा ते निर्भर करदा है। 60 साल का बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल की उम्र विच बंदे नू सूझ कोई नहीं शब्द वरतदे ने इह सत्तरिया बत्तरिया गया है। 12 साल गागर ढो के 72 साल का बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकता है। यही विलखणता है कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने की बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी ओ भी गुरु बन सकते ने ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे

पूजा की जाए ते परमेश्वर की करनी एदे घर दे विच ही जिहड़ा पुत्र पैदा होया उन्हें सब तो पहला आवाज बुलंद की हरनाक्ष की पूजा नहीं जे पूजा करनी जे उस प्रभु की उस राम की करो उस निरंकार की करो जिहड़ा घट कुट भी समाया है ते जिहड़ा हरनाक्ष वर्गे बेंत पैदा करके इन्हां नूं खपा सकदा है। जदों प्रहलाद ने हरनाक्ष दे पुत्र दे ए मनो आवाज निकली कि राम नाम जपवे करो हिरदा हर जी को सिमरन धरो कि प्रभु दे नाम नूं जपो ते हरनाक्ष नूं एक फिक्र पै गया जेड़ी मेरे विरुद्ध बगावत बाहरों खड़ी होनी सी ओह तां मेरे घर विचों पैदा हो गई। इन्हें कोशिश कीती है ते बच्चा इस बच्चे नूं समझ कोई नहीं अलपागे कितना चंगा होवे इस बच्चे नूं किसे स्कूल विच किसे पाठशाला विच किसे मदरसे विच किसे चटसाल विच मैं इनू पढ़ने पावां घटो घट इनू उस्ताद एक गल चंगी तरह समझा देन कि हरनाक्ष तो बिना दुनिया विच होर कोई नहीं हो सकदा छोटे छोटे बच्चियां दी संगत विच बह जेड़े मेरे नाम की दुहाई देंदे ने उन्हां दी संगत विच बह के एह वी नाम मेरा जपे ते गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु देव ने बचन कीता बाबा नामदेव जी ने भगत जी कहिंदे ने उस वक्त एदे दो उस्ताद मुकरर कीते गए। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी मुताबक एक दा नाम सी संडा ते दूसरे दा नाम सी अमरक। दोनों उस्तादां नूं एह गल हरनाक्ष ने कह दिती इस बच्चे नूं स्कूल विच लै जाओ चटसाल विच लै जाओ ते एदे दिमाग विच जेड़ी एह गल बैठ गई है हिरदे विच राम नाम दी अंदर नूं वास करके एदे अंदर केवल इन्ना कु टिका दिओ कि हरनाक्ष तो बिना दुनिया विच दूसरा कोई है ही नहीं। तुसी भी मेरी गल करो जेड़े विद्यार्थी एदे कोल बैठन उन्हां अंदर भी मेरे नाम की चर्चा होवे इन्हां दे दुआले दा माहौल ही एहो जिहा सिरज दिओ कि इहनूं राम नाम भुल के केवल मेरा नाम ही चेते रह जाए। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने हरनाक्ष प्रहलाद नूं पहले दान चटसाल भेजिया ते इहदी फट्टी ते लिखिया जले हरनाक्ष थले हरनाक्ष ते प्रहलाद ने फट्टी रख के क्या कहन लगा ए उस्ताद ए मेरे गुरु मेरी फट्टी ते हरनाक्ष नहीं जे तू मेनू कुछ पढ़ाना चाहने ते मेरी फट्टी ते राम नाम लिख दे क्योंकि राम नाम तो बिना मैं तीसरे शब्द नूं जान दई। उस वक्त लिखते ने धन गुरु ग्रंथ साहिब बचन करते ने इन्हां उस्तादां ने इनू कुछ खेल का समान दिता होर बच्चियां विच बिठा दिता सारे हरनाक्ष जपन ते प्रहलाद ने उठ के ताड़ी मारी कह लगा ओ बच्चों तुसी मेरी उम्र दे हो इन्ने भोले ना बनो हरनाक्ष जमदा है हरनाक्ष ने मरना भी है जिदे ते जन्म है बचपन है जवानी बुढ़ेपा ते मौत है ओ कभी प्रभु नहीं हो सकता जे तुसी जपना चाहते हो ते ओदे नाम नू जपो जिदे ते जन्म मौत बुढ़ेपे का कभी असर ही नहीं हुंदा। बच्चियां दे विच इन्हें राम नाम शुरू किया ते उल्टी खेड़ वापर गई जिन्ना बच्चियां दी संगत करके इन्हें हरनाक्ष नू जपना सी ओ बच्चे सारे राम नाम कूकल लग पे ते हरनाक्ष ने फिर रिपोर्ट मंगी एदे तो पुछया संडे ते अमरक तो कि प्रहलाद ने कुछ पढ़िया उन्हें नीवी पा के क्या कहन लगे ए हरनाक्ष असाडी तो बई तेरे पुत्र ने ता की तेरे नाम नू दिल करना सी इन्हें ता अपने नाल दे चेले भी साथी राम नाम भी जोड़ दिते ने असलियत एही साडे कोल कोई तरीका नहीं एदे अंदर नू तब्दील करके सी तेरे नाल जोड़ सकी। पहली घटना ए वापरी फिर हरनाक्ष ने जदों अपने अंदर गुस्सा खाधा ते प्रहलाद दी मां ने गोदी विच बैठाया प्रहलाद नू कहन लगी पुत्र तेरा बाप सम्राट है उन्हें सारी धरती काबू कीती है बच्चा तू ओदे नाम नू क्यों नहीं जपदा ते प्रहलाद ने कहा सी अम्मा तू मैनू जन्म दिता है मैं तेरा शीर पीता है पर ध्यान रखी मेरे अंदर नाम तो बिना होर किसे लई थां नहीं भावे तू मेरी मां है हरनाक्ष मेरा बाप है पर जेड़ी सच दी चिन्ह मेरे विच पैदा हो चुकी है इनू मां ते बाप भी कदी नहीं बुझा सकते। जदों मां बाप दी गल ना

0: सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता लै रहे सी। आओ जितनी कु सोज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण किया है, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहमिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाइय, भाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यो चुआइय। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे ने। कहो नानक सुन भर थर जोगी, इहदा मतलब ए शब्द किसे जोगी नूं संबोधन करके उचारण किया। पर चेते रखना ए शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। ए शब्द अज भी गुरु के सिखां नूं एक चेतावनी दिंदा है ते नाम रस नाल जुड़न दी प्रेरणा दे रहा है। शब्द असां सुणे, बाबा नानक जी नूं जोगी मिले है। इन्हें गल कीती है लिव दी, गल कीती है अनहद शब्द दी। ते जोगियां दे मत मुताबक उन्होंने प्याला भर के नशे का पेश किया है, शराब का पेश किया है। ते बाबा जी पुछदे ने ए की, कह लगे एक वारी पी लिए ते परत के दिन चढ़े तक एदा नशा उतरदा नहीं। ते इन्नी टेक के समाधि लाई दी कि शरीर नूं थकावट भी महसूस नहीं हुंदी। ते बाबा जी कहन लगे भलियो ए प्यार किवें कीता जे, ध्यान देना। कहन लगे भांडे विच पानी पाया सी, पानी पा के विच गुड़ पाया, गुड़ दे विच किक्कर दे छत पाए ने, अमोवे दे फुल पाए ने। पहला एक कच्ची एक कच्चा रस तैयार होया, परत के अग दी भट्ठी ते भांडे नूं रखिया, ते इहदे चौगिरदे आपां भांडे उपर होर बथल फिट कीता, उहदे विच नाली लाई है, ते भांडे उपर जिहड़ा बथल फिट कीता होर भांडा फिट कीता, ते उहदे चार चफेरे असीं मिट्टी दा पोचा फेरिया, ते थल्लो अग बाली, ते जिहड़ा इहदा अरक निकलिया इहनूं असीं रस कहिंदे आ। इक वारी पी लईए ते रात भर इहदा नशा उतरदा नहीं। इशारा सी शराब वल। बाबा जी कहन लगे शराब दा नशा नहीं, ओ रस की होए जेड़ा शाम नू पीता होवे ते सवेरे उतर जाए। ते कहन लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नू पी चुका हां, ते एहो जिहा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो ओदा नशा ओदा सरूर ओदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगियां ने पुछया ए रस किवें तैयार हुंदा है, ते बाबा जी कहन लगे जोगियों गुड़ कर ज्ञान परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नू गुण बनाया ध्यान कर पावै ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना मैं इनू अमवे दे फुल बनाया कर करनी कस पाईऐ ते उच्चे आचरण नू किकर दे सक बना दिता है पाठी भवन आ शरीर नू पठी बना दिता है इस मोह दी मोह नू मैं साड़न तुरिया वा पाठी भवन तुसी मिट्टी का पोचा देंदे हो प्रेम का पोचा ते एदे विचो शराब नहीं एक रस अमेओ च वड़ गया है एदे विचो अमृत दीआं बूंदा डिगदीआं एक रस अमेओ च आई है कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो मन मस्त हो गया है नाम रस पीवे सहज रंग रच रहा एमस बनी प्रेम निव लागी शब्द अनाहत गया एमस का अर्थ हुंदा दिन ते रात एवो जिहा सुरूर ओ विचार है कि मेरे अपने अंदर ही ओ शब्द सुनाई दे रहे ओ शब्द आप जी ने सरवण किया ते जे आप कह दईए भी ए कले जोगी वास्ते सी ते ध्यान रखियो गुरु के सिखो बाबा नानक जी ने इस शब्द विच कले जोगी नू नहीं हर प्राणी मातर नू कह जिस नशे पिछे तू जीवन बर्बाद कर रहे इस नशे ने ना लोक सवार नहीं ना परलोक सवार नहीं ते कई बारी कोई सज्जन कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दे मुतल्लक कुछ बचन कीते ने हां बाबा अमरदास जी इक बचन करदे ने कहिंदे ने मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पवै विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जिदे तीन नाल अपने पराए की पछाण नहीं ओहो जे बंदे नू तां रब की दरगाह विचों भी धक्के पैंदे हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भगत रविदास जी का एक शब्द हुंदा नादर जना मेरी जात बख्यात चमारन उस शब्द विच इक तोके कहिंदे दुनिया ने सब तो पवित्र गंगा नदी नू मन्निया हिंदुस्तान दे लोगां ने पर भगत रविदास कहन लगे जेकर गंगा दियां लहरां दे पानी दी भी शराब कोई कढ लै ते रब दी बंदगी करन वाला कदी ओहदे वल झाकदा नहीं उहनां दा बचन सुरसरी सललकृत बारनी रे के जेकर सुरसरी दा अर्थ है तू गंगा दियां लहरां दी शराब बना लै सलल दा अर्थ है लहर सुरसरी सललकृत बारनी रे पर नाल कह दिता संत जन करत नहीं पानंग सतगुरु गुरु साहिब जी ने ओह रस दिता जेड़ा रस नाम दा कदी उतरना नहीं खैर गुरु नानक साहिब महाराज जी दा पवित्र इतिहास आपां कल विचार कीती सी गुरु नानक बाबा जी ने सज्जन ठग तो सज्जन भाई बना दिता है अगे लोकां नू ठगदा सी अज एहो जिहा सज्जन बना दिता नाम दा वपारी बन गया गुरु नानक साहिब महाराज सज्जन तो बाद हर द्वार दी धरती ते पहुंचे ने इत्थे मेरे दाता जी ने कुछ एहो जिहा कौतक वरताए जेड़ी कई मुद्दतां तो उन्हां दी मनौत सी एक परंपरा बनी हुंदी सी ते पांडे ने मर्यादा बनाई सी ते गुरु नानक दे उस दलील ते नाम दी बरकत सामने कोई खलो ना सकिया हर द्वार पहुंचे ने अजे सूरज दी टिक्की निकल रही है ते लोग गंगा विच इशनान तय करदे ने ओ लोग तन नू तां धो रहे ने पर मन उन्हां दा दसी पासी धामदा पिया तन धुपदा पिया पर मन धामदा है मन धुपदा नहीं मैं बेनती कीती धामदा दर ते दौड़दा पिया पिंडे ते पानी पै रहा है पर मन ते उस पानी दा असर नहीं ते कुछ कु ने पानी दियां बुक्कां भरियां ने ते सूरज वल पानी पै सकदे ने ते बाबा नानक जी कहिंदे ने मरदानिया तू खलो किनारे ते आ देख पानी पै सिंजदे ने चढ़दे नू आपां वी अपने घर दा कोई सोचिए बाबा नानक जी पानी विच प्रवेश कीता ते लहिंदे नू पानी झटना शुरू कर दिता पानी सिंजन लगे ते जदों बाबा नानक जी इकले लहिंदे नू पानी सिंजदे पए ने हुण इन्नी भीड़ सी कहन लगे देखो आ बंदा कौन है ए हिंदू है ते जे हिंदू वे ते चढ़दे नूं पानी छड़ के लेंदे नूं पानी दे रहा है। ते पंडे कोल आए कह लगे भलिया तू पहली बारी इत्थे आए? कह लगे हां। फिर किन तेनू पता नहीं पानी चढ़दे नूं दईदा लेंदे नूं नहीं? सतगुरु बाबा जी कहिंदे ने चढ़दे नूं क्यों? कहन लगे कुछ तां सूरज नूं पानी देंदे ने, कुछ अपने मर चुके पितरां नूं पानी पै देंदे ने। बाबा जी कहन लगे पितर किन्नी कु दूर ने? उन्हां ने करोड़ां कोह दी गिनती कीती ते बाबा नानक जी फिर पानी झटन लग पै। ते उन्हां कहा हे बाबा असी तेरे सवाल दा उत्तर दे दिता, तुसी पुछिया असी पानी किन्नू देने आ? असी सूरज ते पितरां नूं पानी दे रहे हां ते तुसी पानी किधर दे रहे हो? बाबा नानक जी कहन लगे मेरी धरती है लेंदे नूं, जमीन विच फसल बीजीए। ते कई वारी साडे वीर कहिंदे ने बाबा जी ने कहा मेरी करतारपुर जेड़ी खेती सुकदी पई है। नहीं प्यारे अजे करतारपुर शहर बद्दा भी नहीं सी, करतारपुर ते सब तो अखीर विच बज्जा। कहन लगे लेंदे नूं मेरी धरती विच बीज पिया, फसल सुक रही है, मैं चाहना वा पानी चढ़ चढ़ के उस फसल नूं भरपूर कर दिया। सारे हस के कहन लगे देखो इन्नी अकल नहीं, आ गंगा विचों पानी निकल के तेरे पैरां विच फिर परत के रुड़ के वापस आंदा है, इन्ने को दूर पंजाब की धरती ते पानी पहुंचेगा? जा तेरी उस धरती ते जिथे तू फसल बीजी पानी अपड़ जाएगा? बाबा जी कहन लगे पंडा जी मैं ता अज पानी सिंजन आया, आ तुहानू किन्ना कु चिर हो गया पानी चढ़दे नूं सिंजदे आ? कह लगे ते ता हर साल ही लोकी सिंजदे ने, जदों कोई यात्री आए ते पानी सिंजदा। साहब कहन लगे पंडित जी जे तुहाडा सिंजिया होया पानी करोड़ां को दूर पितरां तक ते सूरी तक पहुंच सकदा है, उह साडी धरती ते सैकड़े कुआं तेरे कि साडा पानी उस धरती ते नहीं पहुंचेगा? जे तेरा सैकड़े कुआं दूर हजार करोड़ां कुआं दूर ते साडा सैकड़े कुआं दूर नहीं जांदा? लोग हैरान हो गए, कहन लगे अज तक किसे ने सोची नहीं, वाकई जेकर पानी पितरां तक पहुंच जांदा है ते इह पानी इस धरती ते नहीं पहुंच सकदा? ते सारे कोल आ गए, कहन लगे बाबा गल तां तेरी बिल्कुल दुरुस्त है, पानी पितरां तक पहुंचदा नहीं। ते चेते रखियो पितरां दा असी अर्थ करने आ जिहड़े मर चुके प्राणी ने, जिहड़े बजुर्ग चढ़ाई कर चुके ने। पर अज बाबा जी ने एक किवाड़ खोलिया उन्हां लोगां दा जिहड़े जिउंदे जी तां बापू दे मुंह विच कुट पानी दा नहीं पाया, जिन्हां ने जिउंदे जी मां बाप नूं रोटी नहीं कदी अदब नाल दित्ती ते मरन तो बाद गंगा विच खलो के चढ़दे नूं पानी सट के कहिंदे ने पितरां नूं पानी देने आ। गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा ने उन्हां लोकां नूं झंझोड़िया। पहली गल इत्थे दो गल्लां ने, एक तीर्थ ते नहाउण वाले ते दूजे पितरां नूं पूजण वाले। आपां भाई साहिब भाई गुरदास जी उन्हां तो पुछिए भी जेड़े लोग जिउंदे जी मां बाप दा अदब नहीं करदे ते मरण तो बाद पितरां नूं पानी देंदे ने, भाई गुरदास जी तुहाडे कोल गुरु नानक जी दे घर दी विचारधारा, दसो उन्हां बारे तुहाडा की ख्याल? भाई गुरदास जी दी वार नंबर 37 ते पौड़ी नंबर 12 ते 13 ध्यान रखना। भाई गुरदास जी कहिंदे ने ऐ मनुख ए माया किन्नी प्रभावशाली है, जिदन तेरा जन्म होया रब दा भाणा उदन वापरिया। वैसे असी भाणा अखर जेड़ा है ना इनू दुखांत नाल जोड़ दिता है, ध्यान देना। असी कई वारी भाणे अखर नू दुखांत नाल जोड़ने आ, कोई काम बिगड़ जाए, कोई मर जाए, किसे नू सट लग जाए, असी कहने भाणा वापरिया है। मौत होवे ते कहने भाणा वापरिया है, ते जदो जन्म होवे ते कोई नहीं जे कहिंदा इन्हां दे घर रब दा भाणा वापरिया है। असल भी जिदन बच्चा जमदा उदन भी भाणा ही वापरदा। आ एक शब्द हुंदा आनंद साहिब विच, जां किस भाणा तां जमिया परिवार भला पाया। कहिंदे ने जां किस भाणा तां जमिया, जिदन तेनू रब जी पाया उदन जीव दा जन्म होया। ध्यान रखना कुछ अखर ऐसे ने, जिवें हुण एक अखर है जलूस, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੂਸ ਅੱਖਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੋ ਤੋਂ ਜਲੂਸ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਲੂਸ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਕਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸ਼ੋਂ ਦੇਵਾ ਜੋਰ ਚਰਨ ਗਹੂੰ, ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਕੋ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ, ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਾਂ। ਚਰਨ ਗਹੂੰ ਬਕੂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ ਅਕੋਰ ਦਰ ਤੇ ਭੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੋ ਉਦਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਵਿਚੋਂ ਗਰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਤਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੈਂ ਉਦਨ ਸਾਈਂ ਵਿਛਰਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਣ ਕਾਮਣੇ ਆਰੀਏ, ਕੀਤੋ ਕਾਮਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਨੀ ਟੂਣੇ ਹਾਰੀਏ ਇਸਤਰੀਏ। ਤੂੰ ਕਾਮਣ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਟੂਣਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਮੇ ਸਾਈ ਵਿਛਰਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਗਾਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ
1: ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰ ਜੋ ਹਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਮੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੰਕਟ ਸਰਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਠ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਪਾਠੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬਣਾਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਥਾ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸਾਡੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨਾਲ ਜੀ
2: ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ।

अकाल मूरत अजूनी सुर पर साद जप आद सच योगाद सच खैपि सच नानक खुशी पी सच जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगण खमारे दया करो किछ मेहर उपावो डूबदे पत्थर तारे जियड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगै काती परणवत नानक हुकम पछाण सुख होवै दिन राती कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई माटी का क्या तोपै स्वामी मानस की गत एकी ना हो जती सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म भया परणवत नानक तिनकी शरणा परणवत नानक तिनकी शरणा जिन तो नाही विसरिया परम सम्मान योग चवर शतर तख दे मालक

जी छीनत वस्त्र दीन बहु साज सुदमा अपदा ते राखिया गणका पड़त पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए।

सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सुकहु टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए

उन्हें अपने पुत्र नू जवान होदियां कैद कर दिता सी बहादुर शाह ने। खैर बहादुर शाह जब तख्त ते बैठा ते उन्हें पुराने धोने धोण की कोशिश की थी, जो वधीकियां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाल होईयां उस वक्त की हुकूमत तो बहादुर शाह ने उसकी खिमा मंगी, दोस्ती पाई, सिख बनिया। एक दिन इतना सन्मान किया कि अपने तखत दिते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बिठाया ते आप बैठ गया सामने दूजे छोटे सिंघासन ते, ते महफिल विच दीवान विच बैठा होया, सभा विच बैठा होया सैयद जो दीनी तालीम देंदा सी बहादुर शाह नू, शरा दे कानून दी वाकफियत देंदा सी बहादुर शाह नू, वो आपे तो बाहर होया। सोचदा उस तखत दिते बहादुर शाह ने मैनू कदे नहीं बिठाया, जिस दिते बहादुर शाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू बिठाया मैनू नहीं कदे बिठाया, जबकि मैं दीनी तालीम देना शरा दा कानून उसका बोध देना। यह फकीर जिसका साढ़े गालबन मजहब नाल कोई नेड़े का वास्ता नहीं सिंघासन ते बिठाया, गुस्सा बहादुर शाह ते नहीं कट सकया, गुस्सा कढ़न लग पाया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते। कहिंदा है एह वली अल्लाह तुसी दसवें गुरु नानक हो, थानू लोकी पैगंबर जान के पूजदे ने, पर यह दसो थोड़े कोल करामात की है, शक्ति की है, ताकत की है, ते आखिर ताकत नूं ही सजदे आउंदे ने, तां दा ही माण आउंदा है। करामात ही खुदा है ते थोड़े कोल करामात की है। बहादुर शाह इस महफिल विच बैठा ते सैयद दा प्रश्न सुन के हक्का बक्का रह गया। सतगुरु कहिंदे सैयद तू करामात वेखनी है ना? कहिण लगा हां करामात वेखनी है। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने इस सारी वार्ता नू कलम बंद किया है गुरु प्रताप सुखी दे। मारे बख्शे देर बहीना, तिस मुख में लख अजमत पीना। तू अजमत वेखनी है, करामात वेखनी है, ते सैयद करामात वसदी है बहादुर शाह दे मूंह दे। इहदे मूंह दे चों बोल निकलदे ने ते हजारां बंदे मनन नू तैयार हो जांदे ने। चाहे जिन्हों मार देवे चाहे जिन्हों बख्श देवे करामात है, और की है। एक बंदा हजार दफा बोल रहा है ते कोई एक बंदा भी मनन नू तैयार नहीं, ते एक बंदा एक दफा मन बोल रहा है ते हजारां बंदे हाथ जोड़ के खड़े हो, ते करामात नहीं ते और की है। उर्दू का एक शायर कहता है, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। ऐसा हो जाता है कई दफा। तो सैयद औखा होकर कह लगा भी ये करामात ते बहादुर शाह दी हो गई ना, उदी जबान दी हो जो कुछ बोले हजारां बंदे मनन नू तैयार ने, थोड़े विच की है। ते महाराज कहन लगे फिर हुण तू जरूरी करामात वेखनी है। हां करामात वेखनी है। सतगुरु ने जेब विचों सोने दी मोहर कढ़ी। उस वक्त जो सिक्का चलदा सी उहदा नाम मुगलां ने दीनार रख्या होया सी, अरब दे जो सिक्का चलदा उहदा नाम दीनार। इंज मोर नू सामने करके सतगुरु कहन लगे, पिख दीनार जो हाथ हमारे, त्यो अजमत लियो दुती विचारे। वेखदा ते सोने दी मोर दीनार करामात है, समुचे संसार दी हल चलदा ए मरकज ते केंद्र है। आम राजनीतिक दुनिया विच वी इसकी बड़ी गल है, शाम दाम दंड भेद। चाणक ने गल लिखी है बड़ी कीमती कि पालना है किसी नू काबू करना है ते किवें करिए। राजनीति दे चार गुर उसने दसे ने, शाम पहले ते उहदी शरण पै जा, उहदे कोल चले जा, उहनू हाथ जोड़ के हलेमी नाल उहनू कह दो असीं तेरे अपने आ, इस ढंग नाल उसनू काबू कर लो, उहदी शरण पै के उहनू काबू कर लो। एक तरीका राजनीति दा है शाम दाम, ते जे उस ढंग नाल नहीं काबू आंदा तां पैसे दे दो, कुछ दान दो, तो चार कौड़ियां दे दो, बिक जाएगा, खरीदिया जाएगा। बड़े बड़े बिक जाते हैं बंदे की आखिर कीमत आती, जिवें बाजार विच माल पे है ना, कोई सस्ता है कोई महंगा।

सबको बरस है। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो अमृत जिहड़ा देवत्यां दा है सिर्फ योगियां लई है त्यागियां लई है। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है ते योगियां लई भी है भोगियां लई भी है। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है उहां हरि मंदिर इहां हरि गुरु मंदिर यहां ते गुरपुर सुरपुर ते सरस है। कवि ग्वाल कहिंदे अगर मैनू कोई चुनन वास्ते कहे तू बैकुंठ चुनना है ए गुरु की नगरी नो चुनना है तो कहिंदा बैकुंठ दे ते सिर्फ हरि दा ही मंदिर है ना इत्थे हरि दा भी मंदिर ते गुरु दा भी मंदिर। यहां ते गुरपुर सुरपुर ते सरस है इस वास्ते देवतियां दे मंडल दे नालों गुरु की पूरी महान है। इत्थे हरि दा मंदिर है इत्थे गुरु दा मंदिर है इत्थे साधु बैठे ने इत्थे ज्ञानी बैठे ने इत्थे अमृत दा सरोवर है। कवि ग्वाल कहते ने ऐ परमात्मा मैं तेरी बनाई हुई बैकुंठ तो भी जो है इस तो कुर्बान करदा इतनी महान है मैं इसकी चोण करदा। तो खिमा करनी देवदासियां नाल अपवित्र होए हिंदुस्तान के बेस्तर मंदिर नाच गाने के अखाड़े बने हुए बेस्तर मंदिर पखंड ते तरह तरह के डिंब के बने हुए ये मंदिर अकाली दे मंदिर सवेरे रोज संडा या बकरा कट के भेज करो ते खून नाल ताली काली नूं तिलक दिओ। मैं तीन दिन लगातार गया पहली दफा जब कलकत्ते गया सी मंदिर देखण तीन दिन मैं रोज गया सवेरे कथा ते लाया मैं अपने नाल दे साथी नूं भावें संगतां बड़ियां औखियां होईयां ते संगतां नूं बाद च पता चले इत्थे काली दे मंदिर नस जांदा सवेरे सवेरे ते मैं अपने ढंग नाल चला जावां शिकंजा उन्होंने एक बनाया होया मूर्ति के सामने ते शिकंजे च पुने वाले दिन ते संडे नूं कहिंदे ने संडा कटदे ने रोज बकरा कटदे ते उत्थे ओह खड़े होके जो मंत्र मंत्र पढ़दे सन ते जो सारी पूजा प्रतिष्ठा करदे सन मैं ओह देखण दो तीन दिन लगातार गया। जैसे शिकंजे च पाके बकरे नूं वढदे ने फिर ओह खून दे तिलक जिहड़े जिन्ने यात्रू आए हुंदे ने दर्शनार्थी उन्हां दे मत्थिआं ते लांदे ने अंदर मूर्तियां नूं लांदे ने फिर उस बकरे का है मांस उस मंदिर प्रसाद के रूप में तोल तोल के मुल दिता जाता प्रसाद है प्रसाद मुल दिता जाएगा। तो मैं तीन दिन लगातार देख के ना तो क्या करनी उन्हें सोच लिया किधरे ये बड़े श्रद्धालु ने बड़े भगत ने तीन दिन दे आ रहे हैं काफी देर दे इतने बैठे रहेंगे तो मैं कह लगे सरदार जी आपका इस मंदिर के संबंध में क्या भाव है। मैंने कहा बहुत अच्छा बूचड़खाना है बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसा और कहीं नहीं है मैंने कहीं नहीं देखा बहुत अच्छा पावन पवित्र ढंग से यह बूचड़खाना बनाया गया है। इसको मंदिर कौन कहेगा यहां ना भजन ना बंदगी खून के तिलक लगाए जाते हैं और यही खून का प्रसाद बांटा जाता है और क्या है यहां ये हकीकत है। भैरो है उन्होंने शराब पिलाओ भैरो दे मंदिर कहने ने ये बर्फ ही नहीं खाता कड़ा प्रसाद है तो शराब पींदा पेट करो शराब पुजारियों ने आप शराब पीनी सी भैरो नूं अगे कीता पुजारियों ने आप संडे खाने सन काली नूं अगे कीता हकीकत इतनी पुजारियों ने आप नाच वेखना सी तो कृष्ण की रास नूं अगे कीता ते पुजारियों ने आप भ्रष्ट होना सी क्षमा करनी कृष्ण नूं अगे कीता ते इंज मंदिर भ्रष्ट हो गए सारे दे सारे निजाम भ्रष्ट होया और पुजारी तबके तो होया। उनते गुरु घर देच ग्रंथी सिंह कहते ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पूजा प्रतिष्ठा करने वाले नो पर किसी वक्त एक दरबार साहब देच हरिमंदर साहब की जो पूजा करते सन उन्होंने ग्रंथी सिंह नहीं कहते सन पुजारी कहते सन कुछ समा यह रौरी ती रही है पुजारी। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दर्शन करना है गुरु तेग बहादुर साहब ते पुजारियों ने बूहे बंद कर दिते ते आखिया नहीं गुरु तुसी अंदर नहीं आ सकते। पुजारियों ने अपनी बड़ी महिमा बनाई हुई सी बड़ी महिमा बड़ी प्रतिष्ठा ते उन्होंने डर पै गया इस मंदिर का मालिक आ गया तो साड़ी केड़ी गल लैनी मालिक नूं बाहर ही रखो आप मालिक बने रहो

शरीर नु तोलेन नाल मन ते नहीं धोता जांदा। विचार ते शुद्ध नहीं हुंदे। तन नु रोज धोंदा रहो, सुभा नहीं बदलना। ऐसा भाई गुरुदास जी ने एक गल आखी, कहन लगे तुमने अमृत सिंचिए, तुम्मे दी वेलन कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे। मिठा घोल घोल पानी विच उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे, ते की तवक्को रखदा है भी तुम्मे दी कुड़त्तन मिठास विच बदल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल दिता है, कहिंदे ने

घर विच वेड़े विच सेन विच निम्म दा दरखत लगाया ते गुआंडी ने पड़ोसी ने आखिया भलिया किसे मिठे फ्रूट दा दरखत लगा दो नाल छाया मान दो नाल फल खान दो भला निम्म दा दरखत घर विच लगाण दा की फायदा इंदी डाली इंदी टाणी इंदे पत्ते हर एक चीज विच कुड़कण ते लगाने वाले ने आख्या मैं रोज सवेरे उठ के शायद घोल के इंदियां जड़ां विच पावांगा और रोज गुड़ ते शक्कर जेड़ा पानी इस नूं दिया करांगा उस विच घोलांगा जदों इस नूं बीजन लगा इस दी जड़ दे कोल मिश्री दी दली टिका देना ते जदों एनी मिठास इंदियां जड़ां विच पावांगा कि निम मिठास नहीं देगी इंदियां टाणियां विच्चों मैनू शहद दा रस नहीं आवेगा। पड़ोसी ने आख्या तू बड़ा भोला ए तेरे हिरदे विच मुगालत है तेरा घोल के पाया होया शहद निम दा सुभाव नहीं बदल सकता उन्दे सुभाव विच कुड़त्ते ने

इतनी भयंकर हनेरी। इस दे रूप में कुवैत ते इराक दे देखे जद हनेरी चल पैंदी है, कारां खड़ियां हो जांदियां, बसां खड़ियां हो जांदियां, लोकी जिथे ने उथे बैठ जांदे, चल नहीं सकते, कुछ दिखाई नहीं देंदा, अखां च घटा पैंदा, मिट्टी पैंदी है और मनुख चलन तो असमर्थ हो जाता है। वह हनेरी किधरे बहुत जोर दी होवे दरख्तों नूं भी जड़ों पुट देंदी है, कच्चे मकान घास फूस दे मकान इन्हां नूं भी उड़ा ले जाती है। खैर पर जब हनेरी चलती है तो सारी जमीन दे उत्ते हनेरी नहीं आती है, जमीन दे किसे एक कद खिते दे चौंदी है। जब तूफान चलता है तो वह तूफान सारी जमीन ते नहीं आता, जमीन दे किसे एक कद खिते चौंदा है। जब सागर दे उछाल आउंदा है तो वैयानी आउंदी है, तूफान आउंदा है ता सागर दे सारे खिते दे तूफान नहीं आउंदा किसे एक कद खिते च। हूबहूर विकारां दा तूफान जब मनुख दे शरीर दे उठदा है ना ते सारे इंद्रियां च नहीं प्रगट आउंदा, कदी अखां च प्रगट होएगा, कदी कन्नां दे च, कदी जबान दे च, कदी खलड़ी दे च, कदी नासका दे च। एक रस प्रधान होवेगा, जिहड़ा एक रस प्रधान होवे ना, अखां दा रस प्रधान है ते सारा दिन अखां दे चस्के लैंदा पिया, समझ लो हनेरी अखां दे च है। जबान दे चस्कियां दे च लीन है और सारा दिन लीन है, तो हुण तूफान जबान दे उत्ते। खलड़ी दे रोग वाशना दे च फसे होया है, कामना दे च फसे होया है, तो हुण हनेरी खलड़ी ते है, सारा दिन झूठ निंदा ते बिखे नाद सुनन दे च ही रस है, हुण तूफान कन्ना दे च है। तूफान आउंदा है एकदम सारे इंद्रियां ते नहीं आउंदा, एक रस एक बंदे च प्रधान हुंदा है पर हुंदा कुछ समय लई है, उतो हनेरी लंघ जांदी है, हनेरी किसे दूसरे इंद्रिय ते। तूफान आउणा है, आसार दिखाई दे रहे हैं, बचाओ कर लो। ऐ जिहड़ा सतसंग है ना जिहदे तुसी कथा कीर्तन सुन लो, बस इहदे च ज्ञात एक बोध मिलदा है कि ऐ बंदे तेरे शरीर दे किस हिस्से च तूफान आण लगा है, सुचेत हो जा, बचाओ कर ले। कथा कीर्तन तो बस ये संकेत मिलते ने, हुण तूफान दी लपेट दे च है, तू किहड़े तूफान दी लपेट च है, और इत्थों ये तूफान लंघ गया तो फिर किसे दूसरे हिस्से च प्रगट होवेगा। मैं फिर अर्ज करा, आपां जितने सारे बैठे हां, हर बंदे दा रस वख वख होवेगा, कोई कन्ना दे रस च फसिया होया, कोई अखां दे रस च, कोई जबान दे रस च, और बोलचाल तो भी पता चल जाएगा ये बंदा केड़े रस दे च फसिया पिया। मैनू गल भुलदी नहीं, दिल्ली तो इलाहाबाद तक मैं सफर कर रहा सी, आसाम मेल दे च एक सज्जन वह भी कोल बैठे सन, कट्ठे सफर हो रहा सी, ज्यों गाजियाबाद तो उसने खाने पीने की गल शुरू की ना तो इलाहाबाद तक करता ही गया, ऐ खाना इंज आउंदा, इंज बनाईदा, इंज बनाईदा, ते मैनू आखिर कहना ही पिया, मैं मित्रा तू किधरे हलवाई ते नहीं या पिछले जन्म दा ते नहीं, ज्यों गाजियाबाद तो तू खाने पीने की गल शुरू की है तो इलाहाबाद तक, जद भी कदी कोई गलबात का माहौल गुफ्तगू का माहौल चले गल खाने पीने की, होर कोई गल नहीं, उत्थों मैं अंदाजा ला लिया तूफान दे बरपा है, पर इस वक्त तूफान इसकी जबान से छाया है। हर स्टेशन ते गड्डी रुके ते कुछ चाहिए है, खान उतरे है, कुछ ना कुछ चाहिए, भावें भुख है भावें नहीं पर कुछ चाहिए है, तूफान तूफान की लपेट दे जबान है। तो जिवें तूफान बेकाबू आता है, जिड़ा रस तूफान दे रूप च जिस इंद्रे च होवेगा वो काबू च नहीं होवेगी, इन्नी मैरज करते हैं। अगर ये तूफान अखां ते होया ते अखां गुरुद्वारे च भी बेकाबू होणगियां, इन्नी मैरज करते हैं। तुसीं सतसंग दे च बैठे हो, किस तरह काबू करोगे, तूफान है ये अखां गलत वेखणगियां। अगर ये तूफान कन्ना ते है ते कन्न इत्थे भी गलत सुणनगे,

आण दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी जिनको कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी।

प्रथम सिनेमर गुरुदेव जी फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा समझियो एकाग्रता प्रदान करने आज दा सोरठ राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा जो महान वाक आया है इस विच ऐसे विषय नू सतगुरां ने छोया है जो करीबन करीबन व्यापक है ते जगत दी समस्या है। मनुख दा कुछ लोड़ां दा जगत है, मनुख दा कुछ लोभ दा जगत है। ये जीवन दे ढंग दोई ने, लोड़ां दे च जीवना, लोभ दे च जीवना, तीजा जीवन नहीं है। कोई जी रहा है लोड़ां दी पूर्ति करने है, कोई जी रहा है लोभ दी पूर्ति करने है। अक्सर 99% मनुखां दियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां, लोभ किसे दा भी पूरा नहीं होंदा। लोभ दा सुभाव है ते पूरा होंदा ही नहीं, होंदा ही नहीं। लोभी मनुख मरदे दम तक अधूरा ही रहंदा है, अधूरा ही रहंदा है। जगत देच पूरन शांतमई जीवन ओही जीवदे ने जो लोड़ां देच जीवे, लोभ देच नहीं। मैं फिर दोहरावां, लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने, लोभ नहीं पूरा होंदा। लोड़ां दी पूर्ति करन दे फिर तीन साधन ने, बड़े ध्यान नाल सुनना। तीन साधन ने। पहला सिरमौर साधन किरत करने, दूजा साधन मंगना मंगता, तीजा साधन खोना लुटना। लोड़ां नू पूरे करन दे ए तीन साधन ने। किरत करके लोड़ां दी पूर्ति करने, मंग के लोड़ां दी पूर्ति करने, खो के लोड़ां दी पूर्ति, और कोई साधन नहीं। जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने

0: ऋग्वेद भीषण स्वरूप ही था मगदर देना ते घर की ले आया छिलके छराया छिलके चावल नहीं छिलके इतनी मेहनत की थी ते प्राप्त की होया छिलके यही जो है घर दे चले आया है ते हुण छिलकिया नाल की होवेगा। ईश्वर के नाम तो बिना जो कुछ भी मनुख ले आया अपने कोल जमा किया है सब छिलके ही छिलके ने छराया ही है तोखी है ये दाने नहीं है। जिसने पेट भरना सी जिसने भुख मिटानी सी ये तुख ने ये छिलके ही छिलके ने। हाँ जी
1: फिर भयो बेदारी न्याय कर काम ना आया
0: जिन्हें बेगारी के सिर देते पुराना जमाना होंदा सी ना सिक्के होंदे सन तांबे दे सिक्के लोहे दे सिक्के चांदी दे सिक्के सोने दे सिक्के धनाढ लोग सिक्कियां दी पंड वजनी हो जाती है बड़ी भारी हो जाती है। एक जगह तो दूसरी जगह पहुंचानी होवे तो फिर मजदूर लभदे सन ते मजदूर दे सिर ते वह पंड रख देनी लखां रुपए दी बोझ थले दबिया जा रहा है पर लखां दे चों एक दमड़ी भी उसकी कोई नहीं कुछ भी नहीं उन सिर दे उत्ते लखां ने पर मलकियत एक दे भी नहीं एक दे भी नहीं बोझ है परिवार का पदार्थां का धन संपदा का चुकया होया है अंतिम समय पल्ले एक देला भी नहीं पैंदा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं सारी बेगार कट्ठे की थी सारा सिर का बोझ जो है कट्ठा किया। हां सिर दे उत्ते किधरे धन की पंड वधदी जाए तो हिरदे विच धर्म वधदा जाए तो फिर बैलेंस बराबर रहता फिर से बैलेंस बराबर है संतुलन बराबर है तो हिरदे विच धर्म है कोई नहीं सिर दे उत्ते धन की पंड वध गई है। महाराज कहते हैं बेगार है जिस दिन यह तन नहीं रहेगा यह पंड भी इतने रह जाएगी यह खाली जाएगा ये तो बेगार से ये तेने सिर का बोझ इसने चुकया एवं निकम्मी चिंता सहेड़ी। हाँ जी
1: भयो अनुग्रहो जाको प्रभु को इस हिरदा नाम वसाया
0: जिन्होंने पूर्वले कर्म प्रालभन अनुसार प्रभु की जिन्हों के अनुकंपा हो गई कृपा हो गई करुणा हो गई उन्होंने अपने हिरदे विच प्रभु का नाम वसाया उन्हों थां दिते। हाँ जी
1: सार संगत का पाछा परे आओ जन नानक हर रस पाया
0: ऐसा मनुख जिस ते कृपा हो गई रहमत हो गई ये सारी कृपा ये सारी रहमत उन्हों सत्संग दे चों प्राप्त होई साधु की संगत दे चों प्राप्त होई गुरु की संगत दे चों प्राप्त होई और हिरदे च नाम वसाया ते सुख दे घर की प्राप्ति हो गई। सुख का घर केवल परमात्मा है परमात्मा लक्ष्य है बाकी सब साधन ने जिस जिसने भी साधन नू लक्ष्य बना दिता है जिंदगी सारी तड़पदिया रोंदिया ही लंघती है। सतसंग का यह फल है कि असी जीवन का लक्ष्य परमात्मा नू बना सकीए ईश्वर नू बना सकीए इतनी सेवा प्रवान करनी। अज रात का भी समागम है सरदार जसपाल सिंह जी कंडा 250 अजीत नगर सुल्तान मिंड रोड 250 अजीत नगर ये सारे जथे कीर्तन करेंगे दास कथा भी करेगा समूह संगत लई गुरु के लंगर का भी इंतजाम है 7 तो लैके 10 बजे तक ये समागम चलेगा 8 तो 9 दास हाजरी भरेगा इस तरह बाकी सारे जथे प्रचारक से नाल आए हुए कवि सज्जन थानू कवितावां नाल कीर्तन नाल विचारां नाल निहाल करनगे जिन्हां कोल समा होवे पहुंचण दी कृपालता करनी 250 अजीत नगर। वाहिगुरु जी का खालसा।

अगर बाहर दा जीवन नरक बने आया है तो अंदर दा स्वर्ग भी खतरे च पै जांदा है। अंदर नरक है ते बाहर स्वर्ग है, ए भी बेमानी हो जांदा है। स्वर्ग दे च की है? इंद्रियां दा रस, धन संपदा दी बहुतात, सारी लोड़ां दी पूर्ति, हर कामना दी पूर्ति हो जानी, ए ते स्वर्ग है। लेकिन जे मन दा चैन नहीं, मन दा सुकून नहीं, आनंद नहीं, तां फिर अंदर ते नरक बने आया। अंदर दा स्वर्ग तेरी नाल बनेगा, बाहर दा स्वर्ग मेरी नाल बनेगा। अंदर दी दुनिया सवरेगी जद कोई संत होवेगा, और बाहरों ओही संपन्न हो सकेगा जिहदे कोल सदा है, जिहदे कोल ताकत है। कमजोर वास्ते बाहर दी दुनिया विच कोई थां नहीं, कोई ठिकाणा नहीं। कमजोर नूं दब के रहना पएगा या मिट जाना पएगा। संसार दा इतिहास इस गल दा सबूत है कि जिहड़ी कौम कमजोर रही है, मिट गई है या दब के रही है, तो दब के रहना भी किसी हद तक मिट जाना है, बर्बाद हो जाना है। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने शस्त्र धारण कर लिया, आप नूं मीरी पीरी दा मालिक आख्या जान लगा। चारों पासे चेमे गोईयां शुरू होईयां कि संत ने तलवार धारण कर ली है, संत ने धनुष बाण धारण कर लिया है, संत ने माला दी गल छड़ के बंदूक ते तोपां दी गल आरंभ कर दित्ती। एक दिन आप गुजरात दे नेड़े लंघे जा रहे सन, महल आप जी दे नाल सन, परिवार आप जी दे नाल सी, लाओ लश्कर पूरे दा पूरा आप जी दे नाल सी। तां एक फकीर ने आप ते तर्क खड़ी कर दित्ती, और तर्क ए सी, दौलत की ते फकीर की, स्त्री की ते फकीर की, और पुत्रां दी होंद की ते संत होना की। फिर नाले ए आखिया, हिंदू की ते फकीर की। जापदा है ए सवाल किसी मुस्लिम फकीर दा सी, हिंदू की ते फकीर की। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने उत्तर दिता, दौलत गुजरान, पुत्र निशान, स्त्री इमाम, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। फकीर इना बंदशां तो उच्चा होंदा है, फकीर इस कैद तो उच्चा होंदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बड़े सुंदर बोल, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पराम। असी अल्लाह दे गीत गाण वाले हां, असी राम दे गीत गाण वाले हां, असी राम दी धुन विच लीन होण वाले हां, अल्लाह तो निछावर होण वाले हां, पर असी हिंदू ते मुस्लिम नहीं। क्योंकि ए इक दीवारा ने ते मनुख दी स्वतंत्रता सारी दी सारी भंग हो जांदी है। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने कह दिता, जैसे सूरज सारियां दे घरां चानना करदा है बिना वितकरे तो, बिना अंतरे तो। सूरज ए नहीं देखदा कि मैं हिंदू दे घर चानना करना है, मुस्लिम दे घर नहीं, मुस्लिम दे घर चानना करना है, ईसाई दे घर नहीं, ईसाई दे घर चानना करना है, सिख दे घर नहीं। जैसे सूरज सारे जगत दा सांझा है, परमात्मा ते परमात्मा दे संत सांझे हुंदे ने, सारे जगत दे वो एक हुंदे ने। तो मीरी पीरी दे मालक ने इस गल ते जोर दिता, ऐ सिखो हुण तुहानूं बाहर दी दुनिया दी भी फिक्र करनी पैगी, क्योंकि मनुख कुछ बाहर है कुछ अंदर है। साडे शरीर दे अंदर दा पाणी बाहर दे पाणी नाल जुड़े होया है, साडे शरीर दे अंदर दी अगन बाहर दी अगन नाल जुड़ी हुई है, साडे शरीर दे अंदर दी पवन ते मिट्टी बाहर दी मिट्टी ते पवन नाल जुड़ी हुई है। अगर बाहर दी पवन नाल संबंध टुट जाए तो अंदर दी भी नहीं रहेगी, अगर बाहर दे पाणी नाल संबंध टुट जाए तो शरीर दे अंदर दा पानी भी नहीं रहेगा, बाहर दी अग्नि नाल संबंध टुट जाए तो शरीर दे अंदर दी अग्नि भी रहे नहीं रहेगी। अंदर ते बाहरों असी जुड़े हुए हैं, एक मिक्का।